WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

0: Barrel. Yeah.
1: भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 49 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: जा, अडियोस अमिगो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Sandra here, Radio Nara, 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, Pakka Desi, Pakka Local.

to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

हर बाल की खाल की ये छाल भी खा जाए, इसके हाथ पड़ जाए तो महीने साल भी खा जाए, किसी बेहाल का बचा जो हाल भी हाल खा जाए, बेमौत मरते मन का ये मलाल खा जाए, लालू का लाल खा जाए, नक्सल बारी की नाल खा जाए, बचपन का धमाल खा जाए, बुढ़ापे की शाल खा जाए, हया तो छोड़ो बहया की चाल भी खा जाए, और अगर परोसा जा सके तो ख्याल भी खा जाए।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, छोटी रातों में जागी सी।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: खत्म।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9.
2: या चुप रहूं
3: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है

नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल। सुनते रहिए रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: वेलकम टू रेडियो नहरा न्यूज रूम, योर ट्रस्टेड सोर्स फॉर ब्रेकिंग न्यूज, बिजनेस अपडेट्स, कम्युनिटी स्टोरीज, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, स्पोर्ट्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स। Broadcasting across 99.9 FM HD4, 101.9 FM and 1490 AM. Listen worldwide on the Radio Naira app at radionaira.com and through OK Google, Alexa and Hey Siri. Radio Naira, the Indian subcontinent community media network. Stay informed, stay connected. This is Radio Naira Newsroom.

रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: छोरों को पीटना की इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे बस्से में किसी को ना मिली होगी।
1: काली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की जरूरत थी है?
0: अब बता रही है

0: तू जो भी कहेगी हम सब कराएंगे मम्मी,
1: बस इस पहलवानी से बचा ले।
2: साल भर के लिए भूल जो कि थारी कोई माँ है।
3: रे इतनी जल्दी भूलगी?
4: जो के बात कर रहा है महावीर, छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवावेगा के?

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Good morning. Welcome. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल ऑन 99.9 FM HD4, 101.9 FM 4090 AM आयुषी एंड आप सभी का स्वागत है जरा मुस्कुराओ में. It is once again एक ऐसा दिन जब हमें हीट की जो एक ओवरऑल रैथ है वो फील करने मिलने वाला है. बिकॉज टुडे ऑल्सो वी हैव एक अनदर हीट एडवाइजरी. एग्जैक्टली क्या है कैसा है वेदर मैं बताऊंगी. बट या जस्ट बी प्रिपेयर्ड दैट आज का दिन भी वेदर वाइज इट इज नॉट लुकिंग दैट गुड. बहुत गर्मी रहेगी, थोड़ी बहुत बारिश रहेगी एंड वेदर वाइज इट्स जस्ट गोना बी मैम. बाकी आज ट्यूजडे है, कल का दिन इट वॉज वेरी बिजी इन द ट्राइंगल. आज का भी दिन बहुत बिजी रहने वाला है. आज भी बहुत सारे मीटिंग्स एंड बहुत सारे डिसीजंस प्लान किए गए हैं जो आज लिए जाने वाले हैं, तो उसके बारे में हमें आज पता चलेगा. हम कल बात करेंगे, बट कल जो डिसीजंस लिए गए हैं, कल जो मीटिंग्स हुई है, उनके बारे में हमें आज पता चला है. यस, वी हैव अपडेट्स रिलेटेड टू व्हाटएवर हैपेंड यस्टरडे. सो ऑल दोज अपडेट्स रिलेटेड टू द ट्राइंगल, बाकी नेशनली क्या क्या चल रहा है एंड और इधर उधर क्या क्या चल रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे अलॉन्ग विद आपके फेवरेट बॉलीवुड के गाने. बिकॉज ऑब्वियसली वेदर ऐसा है तो हमें जस्ट पैर थिरकाने के लिए, हमारा मूड अच्छा रखने के लिए या बॉलीवुड के गानों की जरूरत तो पड़ने वाली है. एंड यहाँ पे आपको वो कॉन्स्टेंटली बढ़िया अनइंटरप्टेड सुनने मिलने वाले हैं. तो इसलिए आप भी कहीं मत जाइए, मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो अभी आई हूँ. एंड या आई एम गोना बी कीपिंग यू अपडेटेड अलोंग विद सम नाच गाना मौज मस्ती. इसलिए स्टे ट्यून्ड, मैं हूँ आयुषी आपके साथ.

हेलो हेलो वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका डीसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो आइए जी वेदर वाइज देखते हैं कि आज का दिन कैसे रहने वाला है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट गुड बिकॉज वी हैव एक और हीट एडवाइजरी इन इफेक्ट जैसे कल थी एग्जैक्टली आज भी है. तो वी जस्ट हैव टू यू नो बी विथ इट. लाइक आज का दिन एक और दिन रहेगा जब हमें इंटेंस हीट एक्सपीरियंस करने मिलने वाली है. ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि इट इज़ गोना मेक इट फील लाइक इट्स 100 से भी ज़्यादा टेम्परेचर्स. आज की जो हीट एडवाइजरी है वो कल के जैसे इज़ इन इफेक्ट फ्रॉम 11 AM टू 8 PM एंड ऑलरेडी हम एवरेज के डबल हीट एडवाइजरीज इस साल देख रहे हैं. एंड लिटरली अब अगर हम देखें कि ये हीट और ह्यूमिडिटी कब तक रहने वाली है तो ऑलमोस्ट आज का दिन है, फिर कल का दिन भी है एंड देन वी आर गोना बी सीइंग थोड़ा बहुत रिलीफ इनटू दिस वीकेंड एंड इनटू अर्ली नेक्स्ट वीक. सो आज का दिन बहुत इंटेंस हीट रहेगी. आज का दिन इज लिटरली गोना बी द 17th टाइम रैली हैज बीन अंडर अ हीट अलर्ट दिस सीजन. इट इज गोना बी द 24th हीट अलर्ट फॉर 512. सो या द सिचुएशन इज नॉट दैट गुड बट रिलीफ जो है इट इज गोइंग टू मूव इनटू फ्राइडे एंड मोस्ट प्रॉब्ली हमारा वीकेंड वेदरवाइज बहुत अच्छा जाएगा. अभी तक तो ऐसा फोरकास्ट किया गया है. सो वी आर एक्साइटेड अबाउट दैट बट दिस इज अदर वेदर इज लुकिंग लाइक. इसका मतलब ये है कि हमें पानी पीते रहना है. वी हैव टू स्टे हाइड्रेटेड. खुद का ख्याल रखना है. बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहने हैं एंड अगर एक भी साइन हमें हीट एग्जॉस्टन का नजर आता है तो हमें ब्रेक लेके पहले सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सुनते रहिए नायरा राली ड्रम के साथ.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आज का दिन हमारी रैली के टीन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपने ट्यून इन किया है ना रैली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल. मैं हूँ आयुषी एंड आप फिलहाल सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. आज अभी थोड़ी देर बाद एट 11:30 AM members of Raleigh City Council are going to be discussing whether to enact a teen curfew or not. Ab ye jo council members hai, they're expected to consider a youth protection and curfew ordinance, and it is according to the agenda for a Raleigh City Council work session jo aaj hone wala hai. So the council asked the city attorney to draft a youth curfew ordinance jo unki 7 July ko meeting hui thi tab, and it was just days after chaos and shootings broke out in Briar Creek and along Glenwood South on the 4th of July. So 4th of July ko jitne bhi incidents hue hain uske chalte ye action liya jane wala hai. And accordingly, wahan pe, according to the police, more than 5,000 teens showed up along Glenwood South and began fighting in the street. And then it just escalated real, real fast. So, aaj baith ke wo decide karne wale hain ki exactly kya hoga, kya nahi. And hume pata chalega by the end of the day ki exactly unhone baith ke kya decide kiya hai, kya kya exactly restrictions lagenge. And curfew mein exactly kya kya aayega, kya kya details rahenge, kaun se restrictions rahenge, kitne baje curfew लगेगा, कितने बजे खत्म होगा, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. सो वील गेट टू नो अबाउट इट मोस्ट प्रॉबली बाय द एंड ऑफ द डे, एंड कल हम बात करेंगे. बट या, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर रैली टीन्स टुडे. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका डीसी पका लोकल। मैं हूँ आयुषियन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज के ऊपर बैठ के डिस्कशन किया जाने वाला है, एंड दैट इज द सेकेंड राउंड ऑफ बजट एडजस्टमेंट्स। सो वे काउंटी स्कूल लीडर्स आर गोना बी डिस्कसिंग अ सेकेंड राउंड ऑफ बजट एडजस्टमेंट्स, एंड दे कुड वोट टू मूव मोर देन $17 million इन स्पेंडिंग टू कवर उनके हायर देन एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय रेजेस। अब ये जो नया स्टेट बजट ऑलरेडी पास हो चुका है, इट रेजेस पे फॉर टीचर्स बाय एन एवरेज ऑफ 8%, विद लेस एक्सपीरियंस टीचर्स गेटिंग अ बिगर पे बम्प एंड मोर एक्सपीरियंस टीचर्स जो है उनको 5% का पे बम्प मिल रहा है। बट द डिस्ट्रिक्ट हैज नियरली 2,000 लोकली फंडेड टीचर्स जिनकी सैलरीज नाउ नीड टू मैच द स्टेट्स पे बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप वहां पे। एंड ये जो $17.6 million का बजट होल है, इट इज मोस्टली टू रेज एजुकेटर पे और मैच बोनसेस दैट द स्टेट विल प्रोवाइड टू स्टेट फंडेड एम्प्लॉयज, एंड अबाउट $500,000 वुड गो टूवर्ड्स अकंपनिंग बेनिफिट कॉस्ट इंक्रीजेस। सो आज बैठ के वो डिसाइड करेंगे कि इसका एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं। अब वे काउंटी पब्लिक स्कूल सिस्टम का अगर देखें तो दे बेसिकली डोंट थिंक दैट दे विल हैव टू कट $17.6 million इन एक्चुअल ऑपरेशंस। दे रिसेंटली लर्न व्हाट इट्स फेडरल एंड स्टेट अलॉटमेंट्स आर एंड हाउ दे आर गोना बी फॉर दिस ईयर, एंड दे आर कमिंग इन हायर देन द डिस्ट्रिक्ट बजटेड फॉर। सो दैट लाइक कि पूरे $17 million की हमें एक्चुअली कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं कि क्या कैसे एडजस्ट हो सकता है, उसके बाद हम बताएंगे। So yeah, that is exactly what they're going to be discussing today, and hame jaise details aate hain we're going to be discussing that as well. Stay tuned, my wife.
1: Naya saal, nayi umeedein, naye gaane, naye sapne, nayi baatein naye saal par. Sab kuch naya, sirf Radio Nayra par.

It was a power packed meeting और फिर वो खत्म हो गई. आपने ट्यून इन किया है नरली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल. मैं हूं आयुषी एंड फिलहाल आप मेरे साथ सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो इट वाज अ पैक्ड मीटिंग. लोग जमे हुए थे, बात कर रहे थे. इट वाज ओवर द यूज ऑफ ऑटोमेटिक लाइसेंस प्लेट रीडर्स इन मूर काउंटी एंड इट जस्ट अब्रप्टली एंडेड यस्टरडे आफ्टर टेंशंस जस्ट लाइक स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप बिटवीन पीपल who were concerned about this particular thing and they were concerned about privacy and law enforcement officials jo the they were defending the cameras as a tool for solving crimes. So logon ke beech aur law enforcement officers ke beech achanak se tanav badh gaya and ye meeting ko fir basically barkhast karna pada. So the Moore County Sheriff's Office owns 10 flock safety cameras spread across the county's roughly 700 square miles and Sheriff Office ne ye bhi kaha ki unke paas already 23 aur cameras ka एक्सेस है विच आर ऑपरेटेड बाई म्यूनसिपैलिटीज एंड अगर हम प्राइवेट बिजनेसेस होम ओनर्स एसोसिएशन एंड रेसिडेंट्स की अगर बात करें तो दे मे ऑपरेट एडिशनल कैमराज एज वेल. अब ये जो कैमराज है दे ऑटोमेटिकली कैप्चर इमेजेस एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हीकल्स ट्रेवलिंग पास देम. शेरिफ्स ऑफिस ने कहा दैट दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन स्पेशली इन्वॉल्विंग स्टोलन व्हीकल्स मिसिंग पीपल एंड एम्बर अलर्ट्स एंड उन्होंने एक आंकड़ा भी बताया कि जुलाई में ही दीज कैमराज वर यूज्ड इन 31 सेपरेट लॉ एनफोर्समेंट मैटर्स जिसमें उनको उसकी मदद ही हुई है. बट पीपल वर लाइक अरे हमारी प्राइवेसी का क्या. सो कल ये मीटिंग बेसिकली उसी के लिए थी एंड रेसिडेंट्स पुश्ड बैक ऑन लॉ एनफोर्समेंट यूज की दीज कैमराज आर नॉट लुकिंग दैट ग्रेट एंड वी आर लिटल बिट स्केयर्ड कि ये हमारी प्राइवेसी को छीन रहा है. तो कल की मीटिंग बेसिकली बर्खास्त कर दी गई. अब देखते हैं कि आगे एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं. बट या बिफोर द मीटिंग एंडेड लीडर्स एनकरेज्ड रेसिडेंट्स हु वांटेड टू फॉर्मली वॉइस देयर कंसर्न्स टू साइन अप टू स्पीक ड्यूरिंग अ काउंटी कमिश्नर्स रेगुलर मीटिंग जो आज होने वाली है. तो आज भी लोग जाके अपना जो एक कंसर्न है वो वहां पे बता सकते हैं. सो या लेट्स सी हाउ दिस गोज. स्टे ट्यून्ड. मैं हूं आयुषी आपके साथ.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Yeah, this is obviously alarming. आपने ट्यूनन किया है ना रियली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूँ आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. So, a record share of kindergartners, not just in a particular area, but nationally, had an exemption for a vaccination required पिछले school year. And ऐसे में हम देख रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट कंटिन्यूइंग टू मेक मूव्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन विच इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड मूव अकॉर्डिंग टू लिटरली साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स जो वैक्सीनेशंस के ऊपर सालों से लिटरली अरसों से रिसर्च करते आए हैं. सो अभी हमने देखा कल ही की बात कि देयर वाज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइंड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप व्हिच एम्स टू रीशेप द फेडरल गवर्नमेंट्स अप्रोच टू वैक्सीन्स एंड द ऑर्डर ऑफर्स रिकमेंडेशंस टू गिव पेरेंट्स मोर इन्फॉर्मेशन एंड ऑप्शंस. बात यहां तक ठीक है बट द अथॉरिटी टू सेट एंड एनफोर्स वैक्सीन रिक्वायरमेंट्स स्टिल लाइज विद स्टेट्स and a growing share are now utilizing unke existing policies jiske under wo literally aate jaate left right center exemptions allow kar rahe hain. So the administration signaled that it will push states to rework unke vaccine requirements to incorporate the new federal guidelines, effectively upending long standing practices which were just aimed at improving childhood immunization rates. And ab it is unclear how exactly the officials are planning to reinforce this, but ye hone wala hai for sure. And ek jagah hame pata chala hai ki jo bachon ki vaccination rates hai wo bas gir rahi hai. Bacche are not getting vaccinated, uske chalte hum dekh rahe hain ki abhi ek measles ka bada sa outbreak हुआ था पिछले साल जो अभी भी चल रहा है. एंड इट वॉज मेजरली बिकॉज ऑफ द रीजन कि लोगों को उसके वैक्सीनेशन नहीं मिले थे स्पेशली बच्चों को बिकॉज बच्चों में वो सबसे ज्यादा जल्दी फैलता है एंड दैट इज हाउ वी सॉ द यू नो आउटब्रेक इन जनरल. सो इट सेज अ लॉट अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट इज बेसिकली हमारी जिम्मेदारी कि हम थोड़ा सा पढ़ के एक रैशनल डिसीजन ले व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेटिंग आवर किड्स. स्टे ट्यून्ड. मैं हूं आयुषी.

0: ओह माय गॉड, इसके पहले तो ये कभी नहीं हुआ. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. इंडिया के स्टार विकेट कीपर ऑलरेडी स्टार है ऋषभ पंत क्रिएटेड हिस्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका जो भी फिलहाल चल रही है. एंड द इंडियन विकेट कीपर बैटर बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हिट 100 सिक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट. 100 sixes. My goodness. So he has now become the first Indian to achieve this feat ever. Ever. तो इसके पहले literally कभी नहीं हुआ है. He reached the milestone with a big six of Lahiru Kumara. And this shot also brought up his 20th test 50. 50 भी बना लिए, मतलब 50 runs भी बना लिए, अपना six भी मार लिया, record भी तोड़ दिया, and record बना भी दिया. So now he has joined the elite list. He is only the fourth batter in test history to hit 100 sixes. इसके पहले अगर हम देखें तो Ben Stokes lead the list. He has like 138 sixes. उसके बाद then we have Brendan McCallum with 107. Pant is now third with 100 sixes. And उसके बाद अगर हम देखें तो former Australia विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट हैज ऑल्सो 100. तो वहां पे बेसिकली टाई है, बट लाइक वो फॉर्मर है तो ऋषभ पंत अभी फिलहाल थर्ड नंबर पे है. एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड मैग्निफिसेंट माइलस्टोन जो कल पंत ने रचा है. तो आप उसके हाईलाइट्स जाके देख सकते हैं. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऋषभ पंत एज वेल बिकॉज हिज 20th हाफ सेंचुरी वॉज ऑल्सो कम्प्लीटेड बिकॉज ऑफ दैट 1/6. सो या Congratulations to him. Stay tuned, my Hawaii show.
1: Sunte rahiye Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka desi.

वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो ट्रंप जी के जो क्रिटिक्स हैं उनका ऐसे कहना है दैट ही इज स्ट्राइकिंग आउट बैडली व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी, बट दूसरी जगहों पे द प्रेसिडेंट इज स्टिल टेकिंग माइटी स्विंग्स. सो हिज लॉन्ग ब्रोकन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ईरान रीच्ड उसका 60-day एक्सपिरेशन डेट yesterday. And instead of celebrating a nuclear deal that might have justified his war, he basically vented his frustration by finding some of America's friends to punish. And हमने देखा कि उसमें ही yesterday announced that he's going to be having lesser military exercises with South Korea, and he rekindled his relationship with North Korea के leader Kim Jong Un. Also on Sunday he was like कि नहीं नहीं South Korea के साथ ये जो हम military exercises काम कर रहे हैं it was because the costs are high and the fact that Seoul declined to participate in the war on Iran, and it was also desired not to upset Kim Jong Un. Yesterday he threatened to bomb Oman apparently for negotiating with Iran to get shipping moving through the Strait of Hormuz, because Iran aur Oman mein baatein chal rahi thi ki are hum is side se Strait of Hormuz khol dete hain fir uske upar hum itne tariffs lagayenge and sab kuch lagayenge, but apparently there is literally no resolution to the conflict. हम अभी भी जस्ट बैठे हैं एंड वी हैव लिटरली नो रेजोल्यूशन इन साइट एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी हैपनिंग. सो या हियर वी आर. या स्टे ट्यून्ड.

Hi, welcome back. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो अब वी आर गेटिंग बैक टू हमारे बेसिक्स एंड दैट इज द बार कोड. अब बार कोड अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ एंड वाई इज इट दैट इम्पॉर्टेंट, तो बार कोड के एक्चुअली बहुत सारे फायदे हैं, लाइक सीरियस एडवांटेजेस फॉर नॉट जस्ट कंज्यूमर्स बट स्टोर्स मैन्युफैक्चरर्स एज वेल. एंड अमंग देम इज दैट इट कुड हेल्प प्रिवेंट द काइंड ऑफ आउटब्रेक्स जो हम रिसेंटली देख रहे हैं, स्पेशली ऑफ डेडली फूड बोर्न इलनेसेस वी हैव सीन इन रिसेंट मंथ्स. एंड उसमें से एक अभी मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दैट इज द लेटेस्ट वन, दैट इज द साइक्लोस्पोरा वन. सो ये जो नया बार कोड है, इट इज अ 1D 10 डिजिट बार कोड दैट आर रियली गुड एट वन थिंग. दे बेसिकली टेल अ कंप्यूटर विच प्रोडक्ट इज बींग स्कैंड एंड दैट्स अबाउट इट. अब ये जो प्रोडक्ट है एक बार अगर बिक जाता है तो बार कोड्स आर इफेक्टिवली यूजलेस. उसके बाद आते हैं टू डिमेंशनल बार कोड्स. दे कंटेन अप टू 3,000 डिजिट्स एंड कैरेक्टर्स मेकिंग देम सिग्निफिकेंटली मोर केपेबल देन देयर 52 ईयर ओल्ड कजन्स. एंड कैशियर उसको वैसे ही रजिस्टर पे स्कैन कर सकते हैं बट कस्टमर्स कैन ऑल्सो स्कैन द बार कोड विद अ स्मार्टफोन एंड उनको फिर पता चलता है कि एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है. सो टूरी बार कोड्स कैन डिलीवर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेयर एंड वेन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट वॉज पैकेज्ड. सो दिस पर्टिकुलर बार कोड अगर हर जगह पे लग जाता है जहाँ पे कस्टमर कैन ऑल्सो बेसिकली स्कैन द बार कोड एंड नो मोर अबाउट द प्रोडक्ट, इट कुड हेल्प प्रिवेंट द नेक्स्ट साइक्लोस्पोरा आउटब्रेक. एंड दैट इज वाई नाउ मैन्युफैक्चरर्स आर गोइंग बैक टू दिस हम्बल बार कोड की नहीं नहीं, अब वी हैव टू मेक श्योर दैट यू नो ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कैसे बना था, कहाँ पे पैकेज हुआ था. ये सारी चीज़ें अगर लोगों को पता चलती है तो लोग पटाख से वो चीज़ डिस्कार्ड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली हम आउटब्रेक्स जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं. सो या मैन्युफैक्चरर्स आर नाउ गोइंग बैक टू दिस पर्टिकुलर थिंग द बेसिक्स. स्टे ट्यून्ड.

हाय जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट मेकर बाय सेल्स इज सेट टू लिस्ट इन शंघाई टुमारो एंड उनका जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है इट हैज ऑलरेडी रेज्ड 6.1 billion yuan, दैट इज अराउंड $905 million एंड मोर देन 8,000 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड, विच इज ऑलरेडी अ रिकॉर्ड फॉर द सिटीज टेक फोकस्ड स्टार मार्केट. सो दे हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड ग्लोबल अटेंशन. एंड ये जो रोबोट्स हैं उनके आपने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे. दे वर डांसिंग, दे वर कुंग फू फाइटिंग एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज नाउ बिकम द पोस्टर चाइल्ड ऑफ द कंट्रीज रोबोटिक एडवांसमेंट. सो कल दिस कंपनी अनवील्ड अ न्यू ह्यूमनॉइड रोबोट डब्ड एज सुपरमैन, विच इट सेड कैन जंप एज हाई एज 2 meters एंड रन एट अ स्पीड ऑफ 12.66 meters per second. एंड इस रोबोट के बाद अब जो कल उनका आईपीओ होगा उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होगी ऐसा कहा जा रहा है. बट इट इज गोना बी लिटरली वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट आईपीओ लिस्टिंग इन चाइना एंड मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद हमें ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर देखे तो उसके बारे में और पता भी चल सकता है. सो या दैट माइट हैपन टुमारो. सो एवरीवन इज एक्चुअली सिटिंग इन एंटिसिपेशन कि इसका आईपीओ कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं बेसिकली. बट या दे आर ऑलरेडी, दे आर ऑल सेट, दे हैव अनवील्ड अ न्यू रोबोट एंड दे आर लाइक कि अब देखो हमारा आईपीओ कैसे होता है. सो या वी आर ऑल्सो वेटिंग स्टेडियम में.

हेलो जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषियन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. आज नेशनल आइसक्रीम पाई डे है, उसके साथ साथ नेशनल पिनो नोआर डे है, एंड आज नेशनल फहीता डे भी है. सो आई वाज लाइक, यार खाने के रिलेटेड, पीने के रिलेटेड अच्छे ओकेजन्स है, वी कैन सेलिब्रेट देम आराम से, एकदम हमारा खुद का टाइम लेके प्रॉपरली इंडल्ज करके. उसके साथ साथ आज नेशनल कपल्स डे भी है, सो इट इज़ जस्ट दैट यू नो कपल्स कैन सेलिब्रेट आज का दिन. And we are celebrating couples as well because एक यूनिक बॉन्ड होता है कपल्स में, अलग अलग प्रकार का होता है, अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं. बट या आज हम अच्छे चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बेसिकली, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग दैट अकॉर्डिंगली. आज नेशनल बैड पोएट्री डे भी है, सो इट इज़ अबाउट गिविंग लाइक एक एक्चुअल प्रॉपर चांस टू बैड पोएट्री, सो दैट यू नो यू कैन जस्ट गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम एंड देन गुड पोएट्री कैन कम. बेसिकली आज उसके रिलेटेड है, एंड नेवर गिव अप डे भी है. सो इट्स जस्ट अबाउट नेवर गिविंग अप, बट जस्ट लाइक यू नो मेकिंग श्योर कि व्हाटएवर आपने ड्रीम किया है, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर जस्ट नॉट गिविंग अप अगर आपको दो तीन सेटबैक्स आ भी जाते हैं तो. एंड ये ओकेजन्स आज आप अकॉर्डिंगली सेलिब्रेट कर सकते हैं विथ लाइक प्रॉपर टाइम, एंड अच्छा खासा अगर आपने उसको टाइम दिया तो या ओवरऑल आपको टेंशन नहीं रहेगा. सो या यू कैन सेलिब्रेट दम अकॉर्डिंगली. स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

0: हेलो हेलो, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट दिस. यंग वर्कर्स इन चाइना आर फाइंडिंग अ वेरी स्ट्रेंज वे टू डील विद वर्क प्लेस स्ट्रेस. एंड मैं ऐसी थी कि दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम जेन ज़ी. लाइक वही ऐसा कर सकते हैं. दे आर ऑलरेडी वेरी अनहिंज. दे आर लाइक कि अगर हमको ये नहीं जम रहा है तो नहीं जम रहा है, जम रहा है तो जम रहा है. दे आर वेरी फर्म विद दैट एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट कि वो अपने बाउंड्री सेट कर लेते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली फनी, बट आई डोंट नो. Like, just because it's me AI involved with, I have mixed feelings about this. But this trend involves using artificial intelligence to create alag alag prakar ke digital characters based on real people. And uske baad users can then make the characters perform funny or embarrassing actions on their computer screen. So basically, Gen Z is doing this with their bosses. So AI desktop pets are becoming increasingly popular in China. And jaise hamare purane virtual pets hua karte the, which followed like a small number of fixed actions, ye jo naye AI powered versions hai, they can be customized to look and respond in alag alag prakar ke ways. And all they have to do is just like upload a photograph of their boss or whatever the person, and then give instructions to an AI application to create a personalized virtual pet. तो मैं ऐसी थी कि आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस कि आप एक्चुअल लोगों के साथ ये कर रहे हैं. इट कैन बी अ फन वे ऑफ डीलिंग विद आपका वर्क प्लेस स्ट्रेस एंड जस्ट यू नो इन जनरल बॉस की झंझट एंड एवरीथिंग. बट जस्ट लाइक मेकिंग देम इन टू एक AI वर्जन अवतार एंड देन मेकिंग देम डू थिंग्स इज नॉट सिटिंग राइट विद मी. सो या आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस, बट अपेरेंटली दिस इज अ वेरी ग्रोइंग ट्रेंड इन चाइना. So yeah, that's that.
1: Stay tuned. Healthy living means Indian tradition. Sunte rahiye healthy rehne ki musical parampara. Only on Radio Nayra.
2: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
3: From crispy Delhi style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat to the signature Soul Dal Bukhara.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
3: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
4: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

हेलो हेलो वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका डीसी पका लोकल में वायुषी एंड मेरे साथ आप फिलहाल एंजॉय कर रहे थे जरा मुस्कुराओ एंड नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. ऑलरेडी आई नो या बहुत ही फास्ट टाइम जा रहा है. आई मीन इट्स ऑलरेडी ऑगस्ट 18th एंड अब ये सेकेंड हाफ तो इतना फास्ट चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा. इट विल जस्ट बी लाइक शूप एंड द रेस्ट ऑफ द 2026 इज डन ओवर एंड फिर एक नया साल शुरू हो जाएगा. आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि इट्स कैन बी 2027 इन सम मंथ्स. मतलब मेंटली आई एम स्टिल इन 2025 और मेंटली यू कुड से दैट आई एम स्टिल इन 2021. या हम कोविड वाले लोग जो बीच के हमारे साल चले गए हैं थोड़ा सा दुख तो होता है बट या एनी वे हियर वी आर. मेरे जाने का वक्त हो गया है. आप हमारी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू डाउनलोड इट आपको सारे अपडेट्स तो मिलते ही रहेंगे. उसके साथ साथ यू नो यू कैन जस्ट लिसन टू योर फेवरेट बॉलीवुड के गाने फ्रॉम एनी टाइम एनी वेयर यू फील लाइक. वी आर जस्ट वन क्लिक अवे. सो डू डाउनलोड हमारी ऐप. बाकी हम मिलेंगे कल एंड सी सारे अपडेट्स मैं दे दूंगी बिकॉज आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली है तो उसके अपडेट्स आज मिलेंगे एंड कल वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट फॉर श्योर. इसलिए कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नायरा राली ड्रम 99.9 FM HD4 101.9 FM 4090 AM. बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ सुंदर दिवस अहेड एंड सी यू. Bye.

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

यार जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

Salman Khan and Prabhas are flop-proof actors, says Om Raut. One of Om Raut's clips from his latest interviews is going viral on the internet, where he calls Prabhas and Salman Khan flop-proof stars. Raut said actors like Prabhas and Salman Khan are flop-proof stars. They have a big fan following, a certain perception and a certain image that doesn't get affected by some flops. They are just beyond. ये बात तो माननी पड़ेगी. मतलब सलमान खान और यहाँ प्रभास जिस तरीके से फैंस के दिल में छाए हुए हैं, नो वन कैन रिप्लेस देयर प्लेसेस, यू नो. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फिल्मी स्टोरीज लाइक दिस ओनली ऑन नायरा.

इस रक्षाबंधन दीजिए एक अनमोल तोहफा जो सदा रहे अपनी बहन के दिल के पास। दिस रक्षाबंधन शॉप फ्रॉम आवर डिजाइनर कलेक्शन ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, राज ज्वेल्स, बंसल ग्रुप।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

admits he had to fight to be treated equally in the industry. Karthik spoke about his experience as an outsider in the film industry. He shared that it's challenging to gain recognition opportunities when you are not from the industry. He said it's harder to get the opportunities on your work recognized when you are not from the industry, and that doesn't end up affecting you. You have to learn everything from scratch, find your own footing and fight to be treated equally. यार ये हर सिचुएशन की बात होती है, मतलब बॉलीवुड वगैरह में तो ज़्यादा होती है, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे लो प्रोफाइल वाली जॉब्स जो होती है जिसमें ज़्यादा आपको देखना दिखाना पड़ता है, उसमें भी यही कहानी किस्सा है कि यार यू हैव टू प्रूव एवरी टाइम योर सेल्फ. चलो फिलहाल मेहनत करो और सुनो आने वाले गाने ओनली ऑन रेडियो नायरा.

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: Armit on the mic, writing what I feel.
1: Armit, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा. कितना पोटेंशियल है तुझ में. क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: बोलेगा कि मेरे पास का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: హ్యాపీ బర్త్డే వైష్ణవి అక్క.
1: హ్యాపీ బర్త్డే వైష్ణవి.
0: అత్తకి చెప్పు బర్త్డే విషెస్. అక్కడక్కడ కెమెరా అక్కడ. హ్యాపీ అత్త.
1: హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పు.
0: హ్యాపీ బర్త్డే అత్త.
2: Hey, want to learn some gully slang? Interesting, na? Bharati, aapke saath on your tune frequency radio Naira 99.9 FM HD4, 101.9 FM Raleigh Duram. Aur maini sikhari gully slang. Anyway, bantai hai. Making public learn all the gully slangs. Let's hear.
3: Chitti wala game hai bolte hai, ekdam shuruaat se. So, pehla word hai bantai hai. Bantai hai matlab badi, dost, khas, bhai log, kya bolte hai? बड़ी एक दूसरे को बंटा है क्या बोलते बंटा है तो ऐसा बंटा है. शूटर शूटर मतलब खास शूटर. वो ये भी भाई लोग ही हो गए जो मेरे साथ में सुमित मिंडा अपने भाई लोग शुभम सब लोग साथ में घूमते फिरते वो लोग को शूटर बोलते हैं. शूटर खास शूटर खास भाई लोग. हटेला क्या हटेले. हटेले मतलब साइको. भेजे से हटेला पब्लिक को मालूम है बंटा हटेला है. तो हटेला मतलब साइको. भेजे से एड़ा. बजमत बजमत मतलब सबको मालूम है. बजमत मतलब ज्यादा बजने का नहीं. बर्तन मत बन. बर्तन बन जाते ना बर्तन ही आवाज करते खाली बर्तन आवाज करते तो बजमत बर्तन जैसा. बमा है बंटा है बच्ची बमा है सेम स्टफ. बड़ी क्या बोलते हैं बंटा है बच्ची बमा है. सो ये था मेरी तरफ से सारे वर्ड्स बम्बई के स्लैंग्स बंटा की तरफ से बंटा के हिसाब से. बहुत प्यार.
2: ओ क्या बात है. क्यों क्या बोलते हो पब्लिक मजा आया कि नहीं. फिलहाल तो आप आने वाले गाने सुनिए उनको सुनने में

हमें लगता है ना कि हम बड़े हो गए हैं, खेलना कूदना तो बचपन में किया करते थे, अब कहाँ, अब तो बहुत काम है, अब खेलने कूदने का टाइम नहीं है, वी कांट मेक इट. अरे क्यों कर रहे हो अपने साथ ऐसा? भारती आपके साथ है ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM रालेजराम. एंड यू नो एज अक्षय एंड दिस टीम ऑफ हिम स्टिल प्लेज व्हेन दे गेट फ्री टाइम, यू शुड ऑल्सो डू दिस टू मैन एक्टर अक्षय कुमार, वरुण धवन एंड टाइगर श्रॉफ वर स्पॉटेड प्लेइंग वॉलीबॉल एट Akshay's home in Mumbai's Juhu on Thursday. A video of the same has surfaced on social media. In the video, Tiger was seen without a shirt. Play भी कर रहे हैं खाली टाइम में. तो हम भी यार, मतलब कभी भी मैं आपको बस रिमाइंड करने आई हूँ कि कभी भी आपके पास जीवन में खाली टाइम मिले, डोंट गेट जस्ट ले अराउंड एंड बी बोर्ड. आप कुछ तो भी ऐसा एक्टिविटीज करो, इन्वॉल्व रहो, इंडल्ज रहो अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर, मेंटल फिटनेस को लेकर, और जस्ट बी हैप्पी एंड रिलैक्स. यू नो, आने वाले गाने भी इंजॉय करो.

to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

डायरेक्टर नाग अश्विन से आलिया ने हाथ मिलाया है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ कल्कि, फिल्म डायरेक्टर नाग अश्विन इज नाउ गोइंग टू ब्रिंग अनदर फिल्म। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, आलिया फिट्स इन द रोल ऑफ दिस मूवी एंड आफ्टर एसएस राजामौलीज आरआरआर अनदर पैन इंडिया फिल्म इज रेडी टू वर्क। हाउएवर, देयर हैज बीन नो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। द रिपोर्ट स्टेटेड दैट बोथ अश्विन एंड आलिया आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एंड वी आर एक्साइटेड।

0: त्रिपाठी जी जब बातें करते हैं, उनकी शुद्ध हिंदी और उनकी वो जो ठहराव है बात करते वक्त, वो सुनकर ही लोग घायल हो जा रहे हैं। भारती आपके साथ, आपके ट्यून फ्रिक्वेंसी रेडियो नायरा 99.9 FM HD 4 101.9 FM राली दुराम पर। द मास्टर हिमसेल्फ पंकज त्रिपाठी एक्सप्लेन्स व्हाई फुकरे इज मच मोर देन अ कॉमेडी ऑफ एरर फुकरे 3। लेट्स हियर।
1: करते हैं ये कहानी, ये दुनिया रिलेटेबल है, आसपास की है। प्लस हर तीनों पार्ट में आप देखेंगे तो ये एक ह्यूमर और कॉटनेस के साथ साथ बड़ी सबटेक्स्ट में कई इम्पोर्टेंट चीज भी कहती है फुकरे।
0: बेसिकली पंडित जी हैज डिकोडेड द मैजिक ऑफ फुकरे, नो? चलो, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शो। अगली बार आपसे मिलूं, टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो नायरा फॉर मोर एंटरटेनमेंट।

hello people, pranam, namaste, adab. Just a call came chow and a very very warm hello to each and every one of you. आगे मैं प्राची, आगे हेलो ब्रैक्सू. आप सुन रहे हैं सुनसरा रेडियो नायरा पे 99.9 एफएम, एचडी 411.9 एफएम और 1490 एएम पर. आज का टॉपिक थोड़ा सा दिल को छू जाएगा. आज हम ऐसी हॉलीडे की बात करने वाले हैं जो सबकी जो बस सुनते ही आपके दिलों में एक पुरानी मेमोरीज में हम घुस जाते हैं. वो है 15th अगस्त. अभी अभी गई है ना. इंडिया से दूर रहने वाले किसी इंसान को बस ये दो वर्ड्स बोल दो, 15 अगस्त, और सडनली पूरा इंडिया आंखों के सामने आ जाता है. सुबह जल्दी उठना, स्कूल की वाइट यूनिफॉर्म, बालों में रिबन्स, हाथों में छोटा सा तिरंगा, स्कूल के ग्राउंड में लाइन पर प्रिंसिपल की स्पीच, नेशनल एंथम, लड्डू और गाने, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, वो एक अजीब सी फीलिंग, मस्त वाली है ना. पता नहीं क्यों लेकिन उस दिन दिल थोड़ा ज्यादा इंडियन लगता है. याद है 15 अगस्त की सुबह नॉर्मल स्कूल डे जैसी नहीं होती. मम्मी बोलती थी जल्दी रेडी हो जाओ, लेट हो जाओगे, और हम सोचते थे आज तो हॉलीडे है. फिर जब याद आता है, हाँ हाँ हाँ अरे आज तो 15 अगस्त है, आज फ्लैग होस्टिंग है, वाइट ड्रेस आयरन हो रही है, शूज पॉलिश हो रहे हैं, रिबन परफेक्ट एकदम टाइट. और मम्मी का मेरे हमेशा एक हमेशा लास्ट इंस्ट्रक्शंस रहता था, तिरंगा सही पकड़ना है ना. स्कूल पहुंचते ही पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है. ग्राउंड में बच्चे रोज में खड़े हैं, टीचर्स सामने, स्टेज पर माइक्रोफोन, और फिर वो मोमेंट जब रूप खींच जाती थी, तिरंगा हवा में खुलता था और हम सब ऑटोमेटिकली सीधे खड़े हो जाते थे. नेशनल एंथम. उस वक्त शायद हम पूरी तरह समझते नहीं थे कि फ्रीडम का मतलब क्या है. हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में डेट्स याद करते थे, 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश रूल, फ्रीडम स्ट्रगल. लेकिन बचपन में पेट्रियटिज्म को हमने थ्योरी से पहले रिचुअल के थ्रू फील किया. फ्लैग देखा, एंथम सुना, लड्डू खाया और घर आ गए. आज समझता है वो रिचुअल्स एक्चुअली मेमोरी एंकर्स थे. साइकोलॉजी में ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है. रिपीटेड रिचुअल्स, म्यूजिक, स्मेल्स और इमोशनली मीनिंगफुल सेटिंग्स मेमोरी को एकदम स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं. इसलिए एक पर्टिकुलर पेट्रियोटिक सॉन्ग या स्कूल ग्राउंड की स्मेल भी हमें डेकेड्स पीछे ले जा सकती है. और जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनके लिए ये और इंटेंस हो जाता है, क्योंकि जब हम इंडिया में थे, इंडिया हमारे आसपास था, यहाँ इंडिया को कभी कभी कॉन्सिक्वेंसली याद करना पड़ता है. एकदम एक फ्लैग लगाना पड़ता है, एक सॉन्ग प्ले करना पड़ता है, किसी फ्रेंड को कॉल करना पड़ता है, बच्चों को बताना पड़ता है बेटा आज 15 अगस्त है. और तब रियलाइज होता है देश सिर्फ एक जगह नहीं होता, देश एक मेमोरी भी होता है, एक स्मेल, एक लैंग्वेज, एक स्कूल असेंबली, एक नेशनल एंथम, वो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, वो डांस परफॉर्मेंसेस और एक माँ की आवाज है ना. एक बात पूछूं, आपके लिए इंडिया की सबसे पहली पेट्रियोटिक मेमोरी क्या है? सोचिए जरा, स्कूल, ये फ्लैग, ब्रेड, लड्डू या कुछ और, या वो फुलफिलिंग जब नेशनल एंथम बजता था और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के आंखों में कुछ भर आता था. मेरे मुझे याद है, मैं आज भी, मतलब इतने साल से हम यूएस में हैं, कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ जब मैं, एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है जब इन दिनों 26th और 15th अगस्त के दिन मैं ये सॉन्ग हमेशा प्ले करती हूँ और वो समहाउ मुझे हमेशा गूज़बम्स दे जाता है. आई प्ले दैट सॉन्ग बीच में कभी अभी, बट वो आँख में से सच में पानी निकाल देता है वो सॉन्ग. सो द थिंग इज कि ये दिल को ये प्यारा सा दिन हमेशा याद करते रहना चाहिए इंसान ने, कभी भूलना नहीं चाहिए. ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग अप, लिसन टू दैट, आई विल बी बैक.

अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट

भरतनाट्यम वाहवा, यहाँ का भांगड़ा वाहवा, यहाँ की लावणी वाहवा, यहाँ का डांडिया वाहवा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चो

0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down. This is the Indian sound. Together so strong in God we trust. Yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्या राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।

Welcome back to Sun Zara Radio Naira 99.9 FM HD 401.9 FM और 4090 AM. मैं हूँ प्राची. और अगर आपने अभी आंखें बंद करके वो स्कूल ग्राउंड इमेजिन किया तो वेलकम टू टुडेज़ जर्नी. और हमारे अब नेक्स्ट सेगमेंट हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो 15 अगस्त को बच्चों के लिए ऑलमोस्ट फेस्टिवल बना देती हैं. स्कूल फ्लैग और वो छोटी छोटी पैट्रियोटिक एक्टिविटीज, है ना. स्कूल का तिरंगा, वाइट यूनिफॉर्म और लड्डू, जिसका भी हमने बोला था इंतजार रहता है. सो आज हम लिटिल 15 अगस्त को रिवाइंड कर रहे हैं. और ऑनेस्टली बचपन का इंडिपेंडेंस डे थोड़ा फनी भी था. हम पैट्रियोटिज्म समझने से पहले खाने मीठे की डिस्ट्रीब्यूशन समझते थे. स्कूल्स में प्रोग्राम स्टार्ट होता था सुबह सुबह. किसी को गांधी जी बनना है तो किसी को नेहरू, किसी को रानी लक्ष्मीबाई, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, राइट, भगत सिंह. और एक बच्चा होता था जिसको माइक्रोफोन मिल जाता था और वो सडनली स्कूल के प्राइम मिनिस्टर बन जाता था, राइट. टीचर्स वीक्स पहले से प्रैक्टिस करवाते थे बहुत टाइम से, देशभक्ति के सॉन्ग्स प्रॉपरली गाना, मार्च पास्ट में लाइन सीधी रखना. ओ मार्च पास्ट रिमेम्बर, मतलब हर पीटी पीरियड में उसकी प्री प्रैक्टिस होती थी अच्छे से करने के लिए. हमारे पेरेंट्स को भी इनवाइट किया जाता था 15 अगस्त के फंक्शन में. फ्लैग को रिस्पेक्ट से होल्ड करना, और हम बैक स्टेज स्नैक्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे होते थे. लेकिन इन एक्टिविटीज़ का एक डीपर रोल भी था. चिल्ड्रंस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को डायरेक्ट लेक्चर से नहीं, एक्सपीरियंस से समझते हैं ना. जब बच्चा खुद फ्लैग होल्ड करता है, नेशनल एंथम में खड़ा होता है, फ्रीडम फाइटर्स का रोल प्ले करते हैं, तो कंट्री टेक्स्ट बुक वर्ड नहीं रहता, आई गेस. सो वो एक लिव्ड एक्सपीरियंस बन जाता है, बनने लगता है ना. और फिर आता था स्पीच कंपटीशन. हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट्स बोलता था, जहाँ से शुरू होता था, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. ये तो मतलब द मोस्ट फेवरेट लाइन्स, राइट. सो और फिर 5 मिनट्स में पूरा इंडिपेंडेंस मोमेंट एक्सप्लेन. हम फ्रंट रो में बैठकर बस एक ही चीज़ सोचते थे कि हमारी मिठाई, हमारी चॉकलेट, हमारा लड्डू कब मिलेगा. लेकिन आज उन स्पीचेस को याद करते हुए एक बात समझ आती है, वो टीचर्स सिर्फ प्रोग्राम नहीं करवा रहे थे, वो मेमोरी बना रहे थे, है ना, हमारी लाइफ में हमारी. और आज जब हम पेरेंट्स हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि चाइल्डहुड रिचुअल्स कितने पावरफुल होते हैं. आपके बच्चे को शायद 15 अगस्त 2026 की एग्जैक्ट स्पीच याद नहीं रहेगी, लेकिन शायद उसे याद रहेगा मेरी माँ ने मुझे इंडियन फ्लैग दिया था, डैड ने मुझे इंडिया के बारे में स्टोरी बताई थी, हमारे घर पे नेशनल एंथम सुना था, या वो पुराने लता मंगेशकर वाले सॉन्ग्स. मेमोरी फैक्ट से नहीं, फीलिंग से अटैच होती है ना. और स्कूल के 15 अगस्त का सबसे स्वीट एंडिंग तो मैंने बताई है. कुछ स्कूल्स में तो मतलब खाना स्नैक्स वगैरह भी होता था, और हमारे लिए प्रोग्राम का अनऑफिशियल क्लाइमेक्स था लाइन बनाओ. एक छोटा सा पैकेट हाथ में आता था और पूरा इंडिपेंडेंस इज सक्सेसफुल. आज यहाँ US में जब इंडियन एसोसिएशंस, टेम्पल्स, कम्युनिटी सेंटर्स और स्कूल्स इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ, तो वो सेम फीलिंग रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं. हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कुछ भी वो मिस करे जो हमने किया है ना. हम पूरा कोशिश कर रहे होते हैं कि जो जिया हमने या जो हमारे संस्कार है, हम कैसे भी करके थोड़ा बहुत हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकें. किड्स यहाँ पे भी फ्लैग्स लेते हैं, डांस करते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स परफॉर्म करते हैं, इंडियन क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज सपोरा में कल्चर सर्वाइव्स थ्रू पार्टिसिपेशन. सिर्फ इंडिया को याद करना इनफ नहीं होता, इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन तक जीना पड़ता है. सो अगेन आई हैव वन क्वेश्चन, आपको स्कूल के 15 अगस्त का जो सबसे फनी यादगार मोमेंट था वो क्या था? आपकी स्पीच या मार्च पास्ट या डांस या कुछ और? मिलते हैं गाने के बाद.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।

मॉडल वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है।

के पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो।

Welcome back to Radio Naira Sunzerope on 99.9 FM HD4, 101.9 FM or 4090 AM. आज के जमाने में अगर किसी को इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम दिखाना हो तो यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम या स्ट्रीमिंग ऐप, है ना। लेकिन हमारे बचपन में दूरदर्शन और बस 15 अगस्त के आसपास टेलीविजन का एटमॉस्फेयर ही अलग होता था। सुबह न्यूज़, फ्लैग होस्टिंग, प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस, परेड, पेट्रियोटिक प्रोग्राम्स और घर के बाहर बड़े टीवी के सामने पापा न्यूज़पेपर के साथ, मम्मी किचन में से आती जाती दादी या नानी जो भी एक मंत्र कर रही होती है, और बच्चे कभी प्रोग्राम देख रहे हैं, कभी फ्लोर पर खेल रहे हैं। उस वक्त नेशनल इवेंट्स को लाइव देखना एक कलेक्टिव फैमिली एक्सपीरियंस होता था। मेरे डैड हमें बुला बुला के पूरा पूरा परेड दिखाने की कोशिश करते थे, बताते थे ये क्या है, वो क्या है, ये देखो। शायद हम दिल्ली तो नहीं जा पाए, पर टीवी से ही एक्सपीरियंस हमेशा किया। आज कंटेंट पर्सनलाइज्ड है, आप अपना फीड देखते हो, मैं अपना, बच्चा अपना। तब एक ही स्क्रीन होती थी और एक ही नेशनल मोमेंट, राइट। इसलिए वो मेमोरीज कलेक्टिव होती थी। आप किसी फ्रेंड से अगले दिन स्कूल में बात कर सकते थे, कल परेड देखी, वो मार्चिंग बैंड देखा या फलाना एयरफोर्स की प्लेन्स देखे। हमारे पास 4K नहीं था, मल्टीपल स्क्रीन्स नहीं थे, लेकिन एंटिसिपेशन था। और एंटिसिपेशन भी मेमोरी का एक ब्यूटीफुल पार्ट है। 15 अगस्त की मॉर्निंग में एक और चीज़ बहुत स्पेशल होती थी मेरे लिए, वो था पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। कभी कभी अगर संडे और रंगोली पे भी एक आध हफ्ते पहले से शुरू हो जाता था, चित्रहार पे भी, है ना। आई यूज़ टू लव दैट द मोस्ट द सॉन्ग्स दोज वर गोइंग ऑन दोज डेज, लाइक सारे जहाँ से अच्छा, वंदे मातरम या मेरे वतन के लोगों। कभी स्कूल में, कभी रेडियो पर, कभी टेलीविजन पर, म्यूजिक इमोशनल मेमोरी को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट कर सकता है ना। डू यू बिलीव सेम? इसलिए आज भी कोई पुराना पेट्रियोटिक सॉन्ग सडनली प्ले हो जाए तो हम सिर्फ मेलोडी नहीं सुनते, हम अपना बचपन सुनते हैं। और एक और चीज मुझे याद आई अभी जस्ट, वो है फ्लैग। उस वक्त फ्लैग का एक डेकोरेशन मतलब नहीं था, वो एक सिंबल था, वो कैसे बताऊँ मैं, लेकिन जो सिंबल्स का मीनिंग तब और डीप होता है जब हमें उसके पीछे की स्टोरी पता हो। तिरंगा के सेफ्रॉन, वाइट और ग्रीन कलर्स और अशोका चक्र, ये सब इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी का पार्ट है, राइट। लेकिन इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग को देखते हुए एक बेसिक आइडिया सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम एक शेयर्ड हिस्ट्री को रिमेंबर कर रहे हैं, एक फ्रीडम स्ट्रगल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और जनरेशंस ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्री इन द डिफरेंट वेज। पेट्रियोटिज्म का मतलब सिर्फ लाउड होना नहीं है, कभी कभी पेट्रियोटिज्म क्वाइटली फैमिली के साथ बैठकर भी एक नेशनल एंथम सुनना भी होता है ना। अगर आज आपके पास इंडिया की सिर्फ एक साउंड वापस लाने का ऑप्शन हो, अगर नेशनल एंथम, स्कूल बेल, पेट्रियोटिक सॉन्ग, रेलवे अनाउंसमेंट या गली की आवाज, आप क्या चूज करेंगे? सोचिए और मुझे बताइए। लिसन टू माई फेवरेट सॉन्ग।

Welcome back to Sunsara Radio, 99.9 FM, Ashifu 101.9 FM, or 4090 AM. सच्ची बताना किसकी आंखें नम नहीं हुई. ये सेगमेंट उन

जब आप दूर दूर एकदम दूर चले जाते हो ना, सडनली ऑर्डिनरी थिंग्स बिकम्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी. एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर में जीरा की स्मेल, हाय. एक स्ट्रेंजर को हिंदी बोलते सुनना, एयरपोर्ट पर किसी को नमस्ते करते देखना, इंडिया का कोई ओल्ड सॉन्ग, और फिर हाथ से बस घर याद आ गया. इमिग्रेशन के बाद लाइफ रुकती नहीं, बिल्स आते हैं, किड्स ग्रो करते हैं, जॉब्स चेंज होती हैं, होम्स चेंज होते हैं, और हम एक नई लाइफ बिल्ड करते रहें, लेकिन रूट्स डिसअपियर नहीं होते हैं. साइकोलॉजी में बिलोंगिंग और आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट्स हमें बताते हैं कि कल्चरल आइडेंटिटी अक्सर मेमोरीज, रिलेशनशिप्स, लैंग्वेज और शेयर्ड ट्रेडिशंस के थ्रू मेंटेन होती है. इसलिए डायस्पोरा में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है. नॉट बिकॉज वी आर प्रिटेंडिंग टू लिव इन इंडिया, बट बिकॉज वी आर रिमेम्बरिंग वेयर द पार्ट ऑफ अस केम फ्रॉम. और एक इमोशनल ट्रूथ भी है, कभी कभी हम इंडिया को मिस करते हुए इंडिया की प्रॉब्लम्स भी याद करते हैं. ट्रैफिक, नॉइस, क्राउड्स, हिट, लॉन्ग क्यूज, और फिर खुद ही हंसते हैं, यार वो सब भी मिस हो रहा है. बिकॉज होम इज नॉट परफेक्ट, होम इज फैमिलियर. आपने इंडिया क्यों छोड़ा? हर इमिग्रेंट की स्टोरी डिफरेंट होती है. कैरियर, एजुकेशन, फैमिली, अपॉर्चुनिटी, मैरिज, चिल्ड्रन, सर्कमस्टेंसेस, है ना. और एक इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया से बाहर रहना इंडिया से बिट्रेयल नहीं है. आप किसी और कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपनी रूट्स को लव कर सकते हैं. पैट्रियटिज्म और माइग्रेशन एनिमीज नहीं है, राइट. समटाइम्स यू लीव अ प्लेस बिकॉज यू जस्ट वॉन्ट टू ग्रो, एंड समटाइम्स आफ्टर ग्रोइंग यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस यू लेफ्ट शेप्ड यू मोर देन यू रियलाइज्ड. इसीलिए देश मेरा देश है ना, ये फीलिंग आ ही जाती है.

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Naira pe kho jao Pakka Desi.
1: Welcome back to Sincera Radio, Naira Pay 99.9 FM, HD4, 101.9 FM, or 4090 AM. Sorry, I'm going to throw a gala, kharab hai. But, ab ek honest conversation, jab hum India se bahar aate hain, to ek phase aata hai, hum yahan kyun hain? कुछ लोगों को आंसर क्लियर होता है, है ना, या करियर के लिए, या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, किसी को नया एक्सपीरियंस चाहिए, किसी को सिंपली लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर. लेकिन साल ब साल ईयर्स पास होते हैं और एक दिन बच्चा आपसे पूछता है, माँ व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस डे, और सडनली आप रियलाइज़ करते हो मुझे अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करनी है. यही पॉइंट है जहाँ कल्चरल कनेक्शन इंटेंशनल हो जाता है. आपके बच्चे को इंडिया का कनेक्शन ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा सिर्फ इसलिए कि आप इंडियन फैमिली से हैं. उससे स्टोरीज चाहिए. तुम्हारी नानी कैसी थी, तुम्हारे स्कूल में 15 अगस्त कैसे होता था, इंडिया में इंडिपेंडेंस डे पर क्या करते थे, तुमने पहली बार ट्रेन में कब ट्रैवल किया. ये स्टोरीज आइडेंटिटी बिल्ड करती है. और प्लीज, रूट्स का मतलब सिर्फ चिल्ड्रन को इंडिया ले जाना नहीं है. रूट्स का मतलब है लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, हिस्ट्री, वैल्यूज, फैमिली स्टोरीज, राइट, फेस्टिवल्स, ह्यूमर, रिस्पेक्ट, कम्युनिटी. आपका चाइल्ड परफेक्ट हिंदी नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्कनेक्टेड है. Maybe he knows your childhood stories. Maybe she loves your dal chawal. Maybe she knows daddy's name. Maybe she can recognize an Indian song. Connection has many forms. और जब parents के लिए एक और challenge है ना, यहाँ कभी कभी हम बच्चों को इंडिया के सिर्फ प्रॉब्लम्स बताते हैं. इंडिया में ट्रैफिक बहुत है, इंडिया में पोल्यूशन है, इंडिया में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. ऑफ कोर्स प्रॉब्लम रियल है, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स बताएंगे तो चिल्ड्रंस इंडिया को प्रॉब्लम के थ्रू डिफाइन करेगा, है ना. उन्हें ब्यूटी भी बताइए, साइंस है, आर्ट्स है, लिटरेचर है वहाँ का, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्पोर्ट्स है, सिनेमा है, लैंग्वेजेस है, क्यूजिन है, नेचर, हिस्ट्री, पीपल, क्रिटिकल लव. ज़्यादा मैच्योर होता है ब्लाइंड लव से. आप कंट्री को लव कर सकते हो और उसकी प्रॉब्लम्स को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो. एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी केयर का फॉर्म हो सकता है. अपनी रूट्स को प्रिजर्व करना पास्ट में जीना नहीं होता. इट मींस लाइक कैरिंग फॉरवर्ड द बेस्ट ऑफ वेयर यू केम फ्रॉम व्हाइल बिल्डिंग समथिंग न्यू वेयर यू आर, है ना. सुनिए,

0: Welcome back to Sunzera Radio, 99.9 FM, SG4 101.9 FM और 1419 AM. मैं हूँ प्राची. अब हम बात करेंगे फ्रीडम की, लेकिन टेक्स्ट बुक वाली फ्रीडम नहीं, आज की फ्रीडम. हम एक्चुअली सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, है ना. सो आज का वर्ड है हमारा फ्रीडम, 15th अगस्त 1947 वाला. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, है ना. लेकिन फ्रीडम का मीनिंग जनरेशंस के साथ इवॉल्व होता है. बचपन में फ्रीडम मतलब था समर वेकेशन, कॉलेज में फ्रीडम मतलब अपनी चॉइस, एडल्ट लाइफ में फ्रीडम मतलब अपनी डिसीशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक पेरेंट के लिए कभी कभी फ्रीडम मतलब थोड़ा सा टाइम अपने लिए. बट नेशनल इंडिपेंडेंस इज मच बिगर. It created the political foundation for India to govern itself. And after independence came another enormous project, building a constitutional democracy. India's constitution came into force on 26 January 1950, right? So 15th August and 26th January are connected, but they come at different milestones. 15th August reminds us of independence, और 26th January celebrates the constitution coming into force. और ये distinction important है, because freedom without institutions, rights and responsibilities can become just a slogan. Democratic society depends on citizens, right? Not perfect citizens, responsible citizens. हम disagree करेंगे, पॉलिटिक्स पर आर्ग्यूमेंट होंगे, डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बट अ शेयर्ड कंट्री रिक्वायर्स द एबिलिटी टू डिसएग्री विदाउट डीह्यूमनाइजिंग ईच अदर. ये भी पेट्रियटिज्म का पार्ट है. और एक लाइन जो मुझे बहुत मीनिंगफुल लगती है, कंट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए हर सिटीजन को सोल्जर बनना जरूरी नहीं. कोई टीचर बनेगा, कोई साइंटिस्ट, कोई आर्टिस्ट, कोई बिजनेस ओनर, कोई पेरेंट, कोई नर्स, कोई इंजीनियर, कोई सोशल वर्कर. हर ऑनेस्ट कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग का पार्ट है. आप यूएस में हो, आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ है, लेकिन अगर आप इंडियन हेरिटेज कैरी करते हो तो आप इंडिया की स्टोरीज भी कैरी कर रहे हो. You can build bridges between cultures. That itself is powerful. है ना, patriotism का next level शायद ये नहीं कि हम कितनी बार बोलते हैं I love my country, I want my country and my community to become a better because I was part of it.
1: Radio Nayanapan, बजेगा सिर्फ best hits.

Welcome back to Sunsara Radio 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM. मैं हूँ प्राची. और अब जो आप थोड़ा इमोशनल होंगे अभी आगे, बिकॉज देर इज वन थिंग वी मिस द मोस्ट व्हेन वी लिव फार अवे. आपने नोटिस किया है जब हम कहते हैं आई मिस इंडिया, एक्चुअली हम अक्सर इंडिया की ज्योग्राफी को मिस नहीं कर रहे हैं, है ना, हम लोगों को मिस कर रहे होते हैं. माँ पापा, भाई बहन, नानी दादी, कजन, स्कूल फ्रेंड्स, नेबर्स, वो आंटी जो बिना परमिशन के घर आ जाती, वो अंकल जो हर बार पूछते थे बेटा पहचाना, और हम सोचते हैं अंकल आप हर साल सेम क्वेश्चन क्यों पूछते हो. होम इज मेड ऑफ पीपल. इसलिए मैं फेस्टिवल्स और नेशनल हॉलीडेज इमोशनली पावरफुल हो जाते हैं बिकॉज दे बिकम रिमाइंडर्स, राइट. सो आपको इंडिया में 15 अगस्त के दिन किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, सबको पता था. यहाँ कभी कभी आपको अनाउंस करना पड़ता है कि इट्स टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, और फिर स्टोरी स्टार्ट होती है वंस अपॉन अ टाइम एंड देन ब्ला ब्ला ब्ला. बट दिस इज वेयर वी कैन मेक इट ब्यूटिफुल. आप अपने बच्चे को अपनी स्टोरी बता सकते हो, उनके उन्हें बता सकते हो कि आपके स्कूल में क्या है, क्या हुआ था, कैसे सेलिब्रेट. उन्हें वो ओल्ड पेट्रियोटिक सॉन्ग सुना सकते हो, उन्हें इंडिया का मैप दिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हो कि इंडिया कितनी लैंग्वेज, कल्चर्स और लैंडस्केप्स का कंट्री है, और एक दिन वो भी किसी और को स्टोरी बताएंगे. दिस इज हाउ मेमोरी ट्रैवल्स अक्रॉस द जनरेशंस. द इमिग्रेंट्स पैराडॉक्स. कभी कभी हम दो जगहों से कनेक्टेड फील करते हैं, यहाँ लाइफ है वहाँ रूट्स, यहाँ प्रेजेंट वहाँ मेमोरीज, और दोनों को लव करना पॉसिबल है. बिल्कुल, आप अमेरिका को अप्रिशिएट कर सकते हो फॉर व्हाट इट गेव यू, और इंडिया को लव कर सकते हो फॉर व्हाट इट मेड यू. देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन. एक्चुअली परहैप्स द ब्यूटी ऑफ माइग्रेशन इज दैट यू बिकम अ ब्रिज. आप दो कल्चर्स को समझते हो, दो वर्ल्ड्स को कनेक्ट करते हो, और ये स्ट्रेंथ है. अ स्मॉल इमोशनल एक्सरसाइज आज रात एक करिएगा. आज एक रात वापस से एक पर्सन को कॉल कीजिएगा जो इंडिया में है, उन्हें बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे विश करना या फिर कुछ इंडिपेंडेंस रिलेटेड बोलना, और जरूर से बोलना कि इस रिलेटेड मुझे तुम्हारी याद आई थी. समथिंग दैट इज एनफ, है ना. और अगर आपके दिल में भी अभी इंडिया के किसी एक पर्सन की याद आ रही है तो मे बी कॉल देम, बिकॉज होम कैन चेंज, सिटीज कैन चेंज, कंट्रीज कैन चेंज, बट सम रिलेशनशिप्स डिजर्व अ फोन कॉल, सो कॉल देम. और कॉल से याद आया, आप लोग भी मुझे कॉल कर सकते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई अपनी मेमोरी आप हमारे साथ सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज डू कॉल मी ऑन 919-999-8595 पर. लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग.

0: Welcome back to Sun Zero Radio Naira 99.9 FM HD4 101.9 FM और 1490 AM. मैं हूँ प्राची. और जब मैंने लास्ट कॉल की बात की थी, वी हैव अ कॉल कॉलर यहाँ पे. लेट्स टॉक वन सेकेंड. हेलो.
1: हाय प्राची जी, हाउ आर यू?
0: हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू?
1: आई एम गुड. आप बहुत ही अच्छा शो पेश करती हैं, मैं हमेशा सुनती हूँ आपको.
0: Thank
1: Beautiful
0: you.
1: songs you're playing.
0: आपका नाम?
1: I love the songs. My name is Anu.
0: Hi Anu, how are you? Nice once again. Welcome to Sunsara.
1: Good, good. आपने बहुत अच्छे songs play किए. But आपके पास वो वाला गाना है क्या जो रोजा मूवी में था ना एक song?
0: कौन सा वाला?
1: भारत हमको जान से प्यारा है.
0: हाँ,
1: you know that song?
0: मैं सर्च करती हूँ आपके लिए, प्ले करती हूँ for sure.
1: हाँ जी, वो नहीं, आप बहुत ही अच्छा. I love your topics every time. I listen to you all the time.
0: Thank you. आपको कुछ कहना है और?
1: नहीं प्राची जी, thank you so much.
0: आप याद नहीं कर रही हो इंडिया को?
1: मैं तो हमेशा इंडिया को याद करती हूँ.
0: क्या चीज?
1: Always. इंडिया का फूड, इंडिया के लोग, इंडिया का स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा, और फिर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स. मैं हमेशा बोलती हूँ अगर इंडिया के लोग और खाना यहाँ आ जाए तो इंडिया जाने की जरूरत नहीं है. बट वो खाना और लोग अपने मिस करते हो सबसे ज्यादा ना, है ना? और कुछ और मौसम भी है ना.
0: Yeah, weather भी.
1: हमेशा जैसे जैसे जो इंडिया की बारिश में नहाने का मजा है वो यूएसए वाली में तो है ही नहीं ना. बिल्कुल भी नहीं है. like, बारिश भी ठंडी लगती है यहाँ की, मजा नहीं आता. इंडिया वाली बारिश अच्छी होती है.
0: आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: मैं कैलिफोर्निया से.
0: ओह वाओ, नाइस, ग्लैड टू नो आप कैलिफोर्निया से सुन रहे हैं.
1: हाँ जी, मैं भी सुनती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी सुनते हैं. मेरे कोई फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने ही मुझे बताया उनके आपका ऐसे ऐसे शो आता है, तो फिर मैंने सुनना शुरू किया.
0: वाओ, थैंक्स टू देम एंड थैंक्स टू यू फॉर लिसनिंग अस.
1: थैंक यू. प्लीज प्ले माय सॉन्ग. ओके,
0: या फॉर श्योर. श्योर फॉर श्योर.
1: थैंक यू. ओके,
0: बाय बाय. सो नाइस, राइट? People listening from other states and appreciating. Who doesn't like it? Thanks for calling. So, once again, welcome back to Sunsara. मैं हूँ प्राची. अब एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेशन मुझे करना था कि 15 अगस्त पर जब हम फ्लैग लगाते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, सोशल मीडिया पर हम पोस्ट करते हैं, ब्यूटिफुल, लेकिन पेट्रियोटिज्म को एक दिन से बाहर कैसे ले जाए? मे बी आस्किंग, मैं अपने कंट्री के लिए ऑर्डिनरी ट्यूसडे को क्या करता हूँ? आपका आंसर सिंपल हो सकता है, पब्लिक प्लेस क्लीन रखना, रूल्स फॉलो करना, वेस्ट कम करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करना, ऑनेस्ट वर्क करना, या फिर किसी वर्कर के साथ डिग्निटी से बात करना, चिल्ड्रन को एजुकेशन और एम्पैथी सिखाना, फेक इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई करना, डिफरेंट ओपिनियंस वाले इंसान को भी ह्यूमन समझना, वुमन की सेफ्टी और डिग्निटी को सीरियसली लेना, कितनी सारी चीज़ें हैं ना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने कंट्री के फ्यूचर में बिलीव करना, ब्लाइंडली नहीं पर रिस्पॉन्सिबली. पेट्रियोटिज्म का मैच्योर फॉर्म इमोशनल भी हो सकता है और क्रिटिकल भी. आप कह सकते हो आई लव दिस कंट्री और साथ में आई वॉन्टेड टू डू बेटर. दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकते हैं. एक पेरेंट एक रूप में मुझे लगता है ये लेसन स्पेशली इम्पॉर्टेंट है. अगर हम बच्चों को पेट्रियोटिज्म सिर्फ स्लोगन्स के थ्रू सिखाएंगे तो वो टेम्पररी इमोशंस बन सकता है. अगर हम पेट्रियोटिज्म को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो कैरेक्टर बन सकता है उनका. और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, जिस कंट्री में आप रहते हैं, जिस कंट्री के भी आप हैं, उन सब के लिए भी आप दो जगहों को के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हो सकते हो, है ना? एक चैलेंज. आज एक सिंपल हैबिट करना, रोज़ फाइव मिनट्स कुछ लर्न करो अबाउट इंडिया, हिस्ट्री, साइंस, कल्चर, इंडिया, मतलब अपने कंट्री के बारे में, कल्चर, लिटरेचर, फ्रीडम फाइटर, या कुछ भी, सोशल रिफॉर्मर, या इंडियन इन्वेंशन, स्पोर्ट्स पर्सन, या क्लासिकल आर्टिस्ट. बिकॉज लव बिकम्स डीपर व्हेन नॉलेज ग्रोज. आप जिस चीज को समझते हो उससे ज्यादा मीनिंगफुली अप्रिशिएट करते हो, करेक्ट? सो यस, लिसन टू दिस एंड आई विल बी बैक सून.
2: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप किसी न्यू इमिग्रेंट को सेटल होने में हेल्प कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप इंडियन कल्चर को रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप ऑनेस्टली अपना वर्क कर रहे हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट रेज कर रहे हो, आप अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गर बना रहे हो, सभी कॉन्ट्रीब्यूशन। नेशन बिल्डिंग का ग्लैमर सोशल मीडिया पोस्ट जैसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ इट इज इनविजिबल, डेली क्वाइट अनसेलिब्रेटेड, और शायद इसीलिए पावरफुल है ना। फॉर आर चिल्ड्रन अब्रॉड, अगर आपके बच्चे यहाँ अमेरिका में ग्रो कर रहे हैं तो उन्हें ये मत सिखाइए कि उन्हें चूज करना है आर यू अमेरिकन और इंडियन। उन्हें सिखाइए शायद कि यू कैन अंडरस्टैंड बोथ, यू कैन सेलिब्रेट थैंक्सगिविंग एंड दिवाली, यू कैन सिंग द नेशनल एंथम ऑफ द कंट्री यू लिव इन एंड स्टिल नो द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री योर फैमिली केम फ्रॉम, राइट। यू कैन रिस्पेक्ट बोथ प्लेसेस। आइडेंटिटी इज नॉट अ पाइप वेयर वन स्लाइस रिड्यूसेस अनदर, आइडेंटिटी कैन एक्सपैंड। और एक दिन आपका चाइल्ड किसी को बताएगा, माई मॉम यूज टू टेल मी दैट इन इंडिया, ओ ऑन इंडिपेंडेंस डे हर स्कूल हैड फ्लैग होस्टिंग एंड ऑल दिस लड्डूज एंड एवरीथिंग, राइट। मे बी दैट स्टोरी विल साउंड ऑर्डिनरी, बट दैट स्टोरी विल कैरी यू फॉरवर्ड। दैट इज हाउ वी बिकम इमॉर्टल इन स्मॉल वेज, नॉट थ्रू स्टेटस, थ्रू स्टोरीज। अ लेटर टू इंडिया है ना, सुनिए। अगर मैं इंडिया को एक छोटा सा लेटर लिखूं तो शायद मैं बोलूंगी, डियर इंडिया, मैं दूर हूं लेकिन तुम मेरे अंदर हो। कभी किसी गाने में मिल जाती हो, कभी मसालों की स्मेल में, कभी माँ की लैंग्वेज में, कभी किसी ओल्ड फोटो में, कभी इंडिपेंडेंस डे के तिरंगे में। मैं तुम्हारी हर चीज से अग्री नहीं करती, तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम मेरी स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, नहीं तुम मेरी एक स्टोरी का एक पार्ट हो। और डिस्टेंस ने मुझे ये सिखाया कि अगर घर की वैल्यू हमारी, जो कभी कभी घर से दूर जाकर समझ आती है ना। सो एक जस्ट फाइनल थॉट, अगर इंडिया आपकी मेमोरी है तो आप उस मेमोरी के केयर टेकर भी हैं। और लास्टली मैं बोलना चाहूँगी कि आज हमने 15 अगस्त को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किया, यहाँ पे हमने उसे रिमेम्बर किया, स्कूल ग्राउंड, वाइट यूनिफॉर्म, तिरंगा, नेशनल एंथम, मार्च पास, दूरदर्शन, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स एक्सेट्रा। और फिर इंडिया से दूर एक घर जहाँ कोई बालकनी में छोटा सा फ्लैग लगा रहा है, कोई यूट्यूब पर गाना बजा रहा है, कोई अपने बच्चों को बता रहा है, बेटा जब मैं छोटी थी ब्लाबला है ना। और हम कहेंगे बिकॉज दैट डे मीन्स समथिंग टू अस, मे बी दैट इज द होल पॉइंट। पेट्रोटिज्म का मतलब हर वक्त इमोशनल रहना नहीं, पेट्रोटिज्म का मतलब ये भी नहीं कि कंट्री को परफेक्ट समझो। पेट्रोटिज्म का एक ब्यूटिफुल मेच्योर फॉर्म ये हो सकता है, रिमेंबर वेयर यू केम फ्रॉम, रिस्पेक्ट व्हाट अदर सेक्रीफाइस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट यू कैन चेंज एंड लिव समथिंग बेटर फॉर द पीपल हु कम आफ्टर यू, राइट। आज इंडिया से हम दूर नहीं, लेकिन दूरी सिर्फ मैप पर है। इंडिया हमारे एक्सेंट में है, हमारे फूड में, फेस्टिवल्स में, सॉन्ग्स में, हम और सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को सुनाई जाने वाली उन कहानियों में है। तो आज अगर आप इंडिया को मिस कर रहे हैं, डोंट हाइड इट, कॉल होम, प्ले दैट सॉन्ग फॉर देम, मेक चाय, शो योर चिल्ड्रन द फ्लैग, टेल देम योर 15th अगस्त वाली स्टोरी एंड लेट योर सेल्फ फील दैट लिटिल। अच्छे, बिकॉज समटाइम्स मिसिंग होम इज अ प्रूफ दैट होम मैटर्ड। हम इंडिया की कितनी भी दूर चले जाएं, इंडिया हमसे उतनी दूर नहीं जाता है ना। सो दिस इज वेयर आवर स्टोरी कम्स फ्रॉम। मैं मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक पे, नए एहसास और नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए और अपनी रूट्स को कभी सिर्फ इसलिए मत भूलिए क्योंकि आपकी ब्रांचेस दुनिया के किसी और कोने तक पहुंच गई है। बिकॉज रूट्स डोंट स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग, सो रूट्स आर व्हाट मेक यू स्ट्रांग इनफ टू ग्रो। और ये चीज मत भूलना, आप बोलो जरा, मैं हमेशा सुन रही हूँ। सो फ्रेंड्स, वेयरएवर यू आर इन द वर्ल्ड, रिमेंबर यू डोंट हैव टू लिव इन इंडिया एवरी डे टू केयर इंडिया विद यू एवरी डे। फाइनल सॉन्ग फॉर यू गाइस, एंड ये वाला सॉन्ग था जो मैं आपको बोल रही थी, जो आंखें नाउ कर देता है ऑलवेज।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नाना 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

लगता होगा मैं बस पैसे के पीछे पीछे भागा। तुम्हें ना दिखे मेरे माथे की शिकन, तुम्हें दिखे मेरे बाएं हाथ पे रोलेक्स, तुम्हें नहीं दिखता मेरे दाएं हाथ पे बंधा काला धागा। 10 साल से तुम्हें दिखता होगा बादशाह कितना फेमस है, तुम्हें नहीं दिखता मेरे माँ बाप कितने बेबस है। 10 साल से अकेले अपनी पोती के साथ भी ना खेले, उन्हें फिर से जवानी दे दे रब चाहे मुझसे तू मेरा सब ले ले।

लाना तुमने नहीं देखा टाइम वो जब मैं रहता था साइलेंट। देखो ध्यान से है।

रेडियो नाइट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। मेरे इंडिया के एक दोस्त के साथ मेरी बात हुई तो वो कह रहा था, भाई हमारे तो मज़े ही मज़े हैं। मैंने कहा कैसे? तो कह रहा था कि फ्राइडे को तो लाइक वीकेंड हमारा शुरू हो चुका था, सैटरडे को इंडिपेंडेंस डे एंड संडे को तो छुट्टी है। मतलब 3 दिन लगातार छुट्टियां मना रहे हैं मेरे इंडिया के जो दोस्त लोग हैं वो। एंड वाकई में इंडिपेंडेंस डे जो था वो इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया है मैंने। सब लोगों की जो स्टोरीज़ है चेक करी, उसके बाद जो फीड है वो तिरंगे से भरी हुई थी। कल का माहौल वाकई में जश्न का माहौल था और इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत शाम का ये पहला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा। पक्का दिस पक्का।

वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बनीवाना नाइट्स। मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड के रिफ्रेश। मैं यही कह रहा था कि नमस्कार मेरे फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं त्रिकोण यानी ट्रायंगल की अपनी आवाज़। एंड वक्त हुआ है शाम के ठीक 7:00 होने का। इस सुहानी शाम में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। अगले 1 घंटे तक मैं आपको हर चीज़ों के बारे में अपडेट देने वाला हूँ एंड बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाने वाला हूँ। बात करें आज के मौसम की तो रैली और दरम में गर्मी का कहर जारी है। वेदर डिपार्टमेंट ने विक और दरम काउंटियों के लिए हीट एडवाइजरी जारी की है। शाम ढलने के बाद भी उमस जो है वो बनी हुई है, इसलिए घर से बाहर निकले तो पानी के साथ रखे और एक बाल्टी भी साथ में रखे। बाल्टी क्या साथ में रखनी है, तो पानी की बाटली साथ में रखनी है और खुद को हाइड्रेटेड रखने का जो है जिम्मा अपना अपने आप को लेना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ये गर्मी में बहुत हो रहा है।

एंजॉय किया आपने गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। एंड लोकल न्यूज, एक बहुत ज्यादा भावनात्मक अपडेट है। रैली की कैपिटल बुलवार्ड पर पिछले 38 सालों में बच्चे और परिवारों की पसंद रहा एडवेंचर लैंडिंग आज अपना आखिरी दिन देख रहा है। जी हाँ, हमेशा के लिए अपने जो एडवेंचर लैंडिंग के दरवाजे हैं वो बंद हो रहे हैं। गो कार्ट्स और मिनी गोल्फ की यादें समेटने के लिए आज यहाँ आखिरी बार लोगों की भीड़ जो है वो जुटी है। एडवेंचर लैंडिंग के साथ बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी जुड़ी है। बहुत लोग काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यू नो, मैं यार क्या कहूँ, 38 साल से ये जो चीज़ चल रही थी वो अचानक बंद हो रही है। इमोशंस भर भर के लोगों में भरे हैं, पर क्या कर सकते हैं, जो होना है वो अपडेट तो आई है। लेकिन क्या पता अभी आगे क्या होने वाला है। आगे अगर कुछ होता है तो आई विल लेट यू नो शॉर्टली। एंजॉय करते हैं अगला ही।

0: हेलो एवरीबॉडी, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा बनी वन ऑन नाइट्स एंड इमोशनल न्यूज़ जो है वो आ रही है लाइक मैंने आपको कहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें भी अच्छा होगा ऐसा सोच के आगे चलते हैं। एक और बड़ी खबर है जिसे आ रही है, लोकल निवासियों के विरोध और काउंसिल सदस्यों की चिंताओं के बाद डेवलपर ने रैली में प्रस्तावित नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट का आवेदन आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। इस फैसले से जो है लोकल कम्युनिटी ने राहत की सांस ली है। बहुत चर्चाएं चल रही थी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन जो डेटा सेंटर का प्रस्ताव है वो वापस लेने के बाद लोगों में एक लाइक यू नो चील हो गए हैं। लोगों का कहना है कि यही होना चाहिए था एंड आखिरकार जनता जो चाह रही थी वही हुआ है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

0: बजाकर वाइब जो है वो सेट कर रखी है। आरक्योर और डरम से ताज़ा अपडेट आ रही है, ड्यूक यूनिवर्सिटी के छात्र इस वीकेंड कैंपस में वापस लौटने लगे हैं। नए सत्र की शुरुआत के साथ ही डरम की सड़कों और बाजारों में एक बार फिर से रौनक और चहल पहल बढ़ गई है। सच में कह रहा हूँ, ये रौनक और चहल पहल जो है बच्चों की देखने लायक होती है और उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स की भी। स्टूडेंट्स के स्वागत के लिए लोकल कैफ़े और स्टोर पूरी तरह तैयार है और ऐसा झमाझम माहौल हो रखा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा माहौल होना भी चाहिए यार। स्टूडेंट्स ही चहल पहल है, यूथ ही हर देश की जो है वो रौनक है, ऐसा मुझे लगता है। एंड क्या ही मज़ा आता है ना, नया नया, लाइक हम भी 90s के किड, जब नया नया स्कूल शुरू होता था, बुक्स को कवर लगाना, नोटबुक को कवर लगाना, उसके बाद वो स्टिकर्स आते थे कार्टून्स के एंड सुपर हीरोज के, अलग ही टाइम था यार वो, है ना। एंजॉय करते, अगला एक गाना
1: बजे पार्टी में। अब खींच रहे फोटो किस सिक करके।